मांस देह बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर ले। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर ले। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतों की बाणी, गुरुआ की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारे की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआ दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाव मुक्त का कर ले। कहिंदे कोई अपना उपा कर ला, कोई जतन कर ला। ये जो तेनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसे जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहेगुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साध संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखा दे दतियां हन, हथ पैर दे दते हन, जबान दे दती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसते हैं जो साढ़े उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहते हैं रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रामैया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने गुणा नूं कुछ याद कर, अकिरत घाना बन, कुछ याद कर, चेते कर। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ते क्या तेरी जो जड़ है, कितों तू पैदा होया है, कवन मूल ते कवन दृष्टानी की दिस रहा है, क्या नजर आ रहा है, तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टरों को भजे फिरते हैं, अस्पतालों भजे फिरते हैं, ही अखा च थोड़ा जा फर्क पै जाता, कन्ना च सुन दी, दंदा दी, होर सास सुन, कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कितना औखा हो जाता है जिसने सारा शरीर दिता है। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत् उसने किवें इकट्ठे किए हैं, पंजा तत्तां दा कितना सुंदर पुतला तैयार किया है, जिस दे विच ए रूप आई है, आत्मा पाई है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। साहिब कै फरमाया जियो देही विच आए पाया, जो सो उसका हुक्म हुंदा है। इस रूह नूं आत्मा नूं ए पंज तत्त दा पुतला, पंज तत्तां दा ए घर, पंज तत्तां दी ए गड्डी, पंज तत्तां दा ए रथ शरीर ए प्राप्त होया। ए अकाल पुरख दी कृपा है, अकाल पुरख दी मेहर है। कितना दिमाग कम करदा है, किवें कम कर रहा है, ए माता पिता दी कृपा तां नहीं है, ए तां अकाल पुरख दी कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। शरीर दी रचना तां उसने कीती है।

प्राण गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच अरदास कर रहे हन। हे निरंकार आप सरबग हो असी अलपग जीव हां, आप निरंकार हो असी भुलनहार, असी कूड यार जो भी बचन करदे हां उस नाल कूड दी लब लगी होंदी है। आप दा नाम सदा सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। असी गुनाहगार हार हार भुलन हार हां, इसलिए संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कुछ कीता नहीं। तेरे दर ते तां जपन वालियां दी इज्जत है सत्कार है, पर असी तो केवल तेरी बख्शिश लोड़दे हां। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई चंगा कर्म नहीं, कुड़ियार असी कुड़ियार हां, क्योंकि नाम ना

ऐसा विचार करो, हम भी ऐसे बगीचे के बूटे बन जाएं जिस बगीचे के बूटों को वासना रहित फल लगता है, निर्वाण पद प्राप्त होता है। ऐसा फल जिसमें नाम रस है, नाम रस के अलावा और कोई भी वासना नहीं, और ऐसे गुरु को नमस्कार करें जो ऐसा माली है, जो इन बूटों को अमृत से सींचता है। देखना, इस बगीचे के बाहर जाकर देखो, आसपास बिखुआ के कुंटा, बाहर ईर्ष्या है, दुविधा है, कपट है, छल है, बाहर तो जहर है। इसीलिए हमें चेतन करते बोले, देखना इसके भीतर आपको अमृत से सींचा जाता है। वो ऐसा अमृत जिसने आपको अमर करना है, जिसने आपको जन्म मरण के चक्कर से बचाना है, आवागमन से बचाना है। और ऐसा है जो गुरु की नजर में फूलता है, उस बूटे को ऐसा फल प्राप्त होता है जिस फल से वो सच प्रकट हो जाता है, जिस सच से ये बोया गया है। ऐसे मालूम होता है गुरुमुख की टेक जो है, नाम है, ओनली नाम अखवाई करो, गुरुमुख की टेक ओनली नाम। गुरुमुख परमात्मा के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरुमुख का दान है। गुरुमुख परमेश्वर के नाम की कमाई कर, गुरु शब्द की कमाई कर, अपने मन को, अपनी मत को तो लेता है, ये गुरुमुख का स्नान है। पानी से तो सब नहा लेते हैं, लेकिन जो वाणी से नहाता है वो गुरुमुख है। देखना, पानी से हमने अपने तन को, अपने शरीर को स्नान कराना है, ऐसे नहीं कि हमने स्नान नहीं करना। शरीर को पानी के स्नान की जरूरत है, लेकिन पानी का स्नान के अलावा आपको मन को भी वाणी के स्नान की जरूरत है। आप जितनी देर तक वाणी से स्नान नहीं करते, आपका मन अरोग ना होगा। देखना, जे मन अरोग नहीं, जीवन भी अरोग नहीं। जे जीवन अरोग नहीं, ये काया भी, ये तन भी अरोग ना होगा। सिर्फ हम सोच लें कि सिर्फ तन को अरोग रखें, मन जे तंदुरुस्त ना होगा, ते शरीर भी काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टल। मन क्रोध करता है, मन काम करता है, लोभ करता है, लेकिन भोगना तो शरीर को पड़ता है। भोगता शरीर है, इसलिए गुरुमुख
वाणी से स्नान करता है, प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल होए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रे हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुंघना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितरसा दे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरोवर है संतो स्नान करो लेवला। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना, ऐसा स्नान किया अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की ज्योत दिखाई देती है, उसकी देखनी कैसी हो गई। अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जहां गुर देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखुवाई। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम आखो वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधि बांटता है, यह गुरमुख का दान है। निरपो होए पजय भगवान, साध संगत मिल कीनो दान आखो वाहिगुरु, ऐसा दान। ऐसा दान करने वाला गुरमुख एक बेनती कर दूं, ये कभी मरता नहीं। आपको भाई गुरमुख कभी नहीं मरता। देखना, शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं। आपको भाई मेरे साहब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्मे सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरमुख नहीं।
जो गुरु के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितृवाणी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुर का शब्द अपार। जिथे गुर का शब्द है उत्थे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। आखो भाई, गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं। और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रख कर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितृवाणी में बोले थे। गुरमुख तो यह कहता है, सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है। लेकिन गुरमुख ये बोलता है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर क्या जानो। आखो किच हर किया पेओ कबीर कबीर। पर कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है ना हम किया ना करेंगे, ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम। जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है हम किया हम करेंगे। आखो भाई, हम मूर्ख। आखो भाई, गवार। करने वाला बिछरिया दूजे पाए पिया। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है। कर कुछ सकता नहीं, पितृवाणी में ऐसा बोला। कहते गुरमुख मुए जीव दे प्रवान है, मनमुख जन्म मरा है। आखो भाई, देखना आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाणियां देखी, टाणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे, लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा, छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है। वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा होगी, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया, जे पतझड़ आ गई लेकिन बसंत ऋतु की फिर कामना है। आंखों भाई जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत ऋतु आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई, जो टूट गई वो मुर्दा हो गई, जो उसके साथ जुड़ी रही वो जीवित रही। ऐसे ही मन मुख वो छड़ी है जो परमेश्वर वृक्ष से टूट गए हैं, उनका नाम साकत है, उनको मनुख नहीं बोलते, मनमुख बोलते हैं, वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं, वो आत्मिक तौर पर मर गए हैं, जीवित नहीं, वो छड़ी जैसे हैं। पेशा कितना अपने आप को सवार लें, लेकिन जीवित नहीं, आत्मिक तौर पर जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, उनको फल नहीं लगेगा, वो किसी को भी अपनी बगल में सुख नहीं दे सकते, जैसे छड़ी किसी को छांव नहीं दे सकती। छड़ी किसी को पीड़ तो सकती है, सुख नहीं, मन में किसी को दुखी तो कर सकते हैं लेकिन सुख नहीं। शायद इसीलिए हमें बोला, मन मुखा नालो तुटी भली जिन माया मोह प्यार। लेकिन गुरमुख वो छड़ी है, वो टाणी है जो परमेश्वर वृक्ष से जुड़े हुए हैं। देखो जन्म तो मनुख का भी, जन्म गुरमुख का भी माता की कुख से हुआ है, जन्म एक जैसा है, लेकिन जन्म पाकर जीवन में एक तो प्रभु वृक्ष से टूट गए, एक परमात्मा की याद में जुड़े रहे, जो जुड़े रहे वो तो फल प्राप्त करते हैं, वो खिलते हैं, सदा विकास में रहते हैं। आप विकास में, दूसरे को भी विकास में रखते हैं, लेकिन जो मनमुख हैं टूट गए, उन्होंने तो अपना जन्म भी बर्बाद कर लिया, अपना जीवन भी निष्फल कर लिया, ऐसे लगता है वो अपना मरना भी निष्फल कर रहे हैं, मरना भी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पर हैं, मरना खराब कर रहे हैं। देखो जीवन तो वो है जो जीवन जीते ही हम जीवन जीते हुए अपने ऐसा जीवन जिए, अपने जन्म को भी सवार लें, संसार वाले कहें इनकी माता तो धन है जिसने जन्म दिया है, जीवन में भी धन धन हो तो अपने जीवन में अपने मरने को आप सवार कर चले जाएं, ताकि जाने के बाद सब प्यार से याद करें।
ऐसा ही बोला। गुरमुख मुए जीवदे परवान है, ओता जूंदे भी परवान ते मरण तो बाद भी परवान, पर मनमुख मानमुख जन्म मरा है आखो वाहिगुरु। मनमुख ने अपना जन्म बर्बाद किया है, कैसे पितरबानी में शब्द से हमें समझाते हैं।

सो जन हुए परवान, कुल उधारे अपना। सो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले सुगंधी के नजदीक पहुंचे। वैसे सुगंधी का एक स्वभाव भी है, कैसा है? सुगंधी हमेशा ही फूल के नजदीक ले जाती है। जी अगर नजर फूल ना भी आए तो उसकी याद में समो देती। ये सुगंधी का स्वभाव है। सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले जिधर से सुगंधी आ रही थी उधर पहुंच गए। जिसके पास वो फूल था सुगंधी देने वाला, वो बोला, देखना ये सुगंधी इस फूल की है। देखने वाले ने फूल को देखा, उसके खेड़े को देखा, उसकी पत्तियों को देखा, गुलाबी रंग को देखा, बहुत मस्त हुआ, कैसा सुंदर फूल। समय बीत गया, कई सैकड़े वर्ष बीत गए, लेकिन सुगंधी फिर भी आती रही। सुगंधी को सूंघने वाले फिर उसके पास पहुंचे। पहले तो आपने फूल दिखाया था, अब तो आपके पास फूल नहीं है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सुगंधी कैसे आ रही है? वो बोला, ये बात तो बिल्कुल सत है, हमारे पास फूल नहीं, ना हम फूल को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास फूल ही नहीं, दिखाएं क्या? लेकिन ये सुगंधी उस फूल के अत्र की है। अब फूल नहीं है, हमारे पास अत्र है, ये अत्र की सुगंधी है। ऐसे ही मालूम होता है गुरमुख जीवन में सुगंधी बांटते रहे, आंखों भाई सूंघने वाले सूंघते रहे। जितनी देर तक गुरमुख उनको शरीर मिला, उतनी देर तक उस शरीर में सुगंधी का प्रकाश किया। उनका संग करने वाले वो शुभ गुणों की सुगंधी लेते रहे। जो जीवन में दुर्गंध थी, मनुख के भीतर थी, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए गुरमुख का संग क्या है? सच का संग, सत का संग, ऐसे विचारों का संग जो सत में प्रवेश करते हैं। गुरमुख का बोलना भी सच, गुरमुख का गाना भी सच, गुरमुख का सुनना भी सच, गुरमुख का देखना भी सच। ऐसे लगता है गुरमुख के पास सच के अलावा कुछ और होता ही नहीं, सच ही सच। सुगंधी लेते रहे, पर कितने वर्ष बीत चुके, गुरमुख का शरीर तो नजर नहीं आएगा, ना आवेगा, लेकिन सुगंधी तो आज भी लेने वाले लेते हैं। आखो भाई, जीव दिया मोया ना बिसरे। आखो भाई, जीते हुए भी सुगंधी देते थे, हम उनको याद करते थे। आखो भाई, ऐसे गुरुमुख सदगुरु का संग करते थे, सदगुरु को अपने जीवन में भी याद करते थे, सदगुरु से गुरु शब्द की सुगंधी लेते थे,
गुरबाणी की सुगंधी लेते थे, गुरु शब्द की विचार की सुगंधी लेते थे। आप देखो शरीर चले भी गए, हम भी वही सतगुरु की, वही शब्द की, वही गुरबाणी की सुगंधी आप भी ले रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि गुरमुख जीते जी भी सुगंधी बांटते हैं, मरने के बाद भी बांटते हैं। गुरमुख जीते जी भी अपने सतगुरु को नहीं भुलाते, मरने के बाद शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी याद में बैठने वाले भी उसी सतगुरु को याद करते हैं। इसलिए ठीक बोला, गुरमुख मरते ही नहीं। आखो वाहिगुरु, मरेंगे तो हम शरीर मरेंगे, वो कैसे मरेंगे? इसलिए हमें बोला कि देखना गुरमुख की बरसी मत मनाना। आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाना, बरसी तो उसकी मनाएंगे जो मर गया है, शरीर मरा है, गुरमुख तो मरा नहीं। आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाओ, बरसी नहीं। मरत मरता तो है ही नहीं। देखना बंसरी बजती थी, बंसरी बजाने वाले बंसरी बजाते रहे, बहुत बजाई, सुनने वाले बोले बस करो, बहुत हो गया, आपने बंसरी बजा ली, अब तो आराम कर लो। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। फिर बोलने वाले बोले आप कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी, बाद में बजा लेना। लेकिन बंसरी रुकती नहीं। फिर बोला आप पानी पी लो, प्यास लगी होगी, लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। ऐसे लगता है अब तो बंसरी बजाने वाले को बजा रही है, बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा। अब ऐसे मालूम होता है कि बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा, बल्कि बंसरी ही बजाने को बजा रही है, बंसरी बजाने वाले को बजा रही है। देखो बंसरी बजाने वाला हीरो हो गया, वो तो बंसरी का रूप हो गया। अब उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना आराम है, बिल्कुल हीरो हो गया। ऐसे ही गुरमुख जो शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम वाणी का अभ्यास करते हैं, प्रभु की कीर्ति करते हैं, इतना अभ्यास किया शब्द का, इतना अभ्यास किया शब्द का, अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, ना उनको ऊंग है ना भूख है। आखो भाई, बोला गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भूख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिते आत्म राम प्रकाश। ना ऊंग है ना भूख है। मैं एक बेनती करूं, गुरमुख को कभी आलस आता ही नहीं। जे हमें आलस आता है तो समझे ना अभी हम गुरमुख नहीं बने। आखो भाई, जिसका गुरु ये बोले आपने अमृत वेले को संभालना है, आलस क्या करेगा? गुरमुख आलसी नहीं होता। जे अगर अभी भी हमें आलस है तो हम गुरमुख नहीं। आखो भाई, मनुख हैं, मनुख आलसी होते हैं। आखो भाई, लेकिन गुरमुख नहीं। गुरमुख के जीवन में ना ऊंग है ना भूख। गुरु शब्द का अभ्यास करते करते ही रहे करते ही रहे, गुरु का शब्द का अभ्यास करते करते ऐसे हुआ अब तो ऐसे लगता है अभ्यासी अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि गुरु शब्द अभ्यासी को अभ्यास करा रहा है। अभ्यासी कीर्तन नहीं कर रहा, बल्कि कीर्तन अभ्यासी को कीर्तन करा रहा है। आज नाम वाणी की कमाई अभ्यासी नहीं कर रहा, बल्कि नाम वाणी अभ्यासी को अभ्यास करा रही है। आज देखना अभ्यासी तो जीरो हो गया, अभ्यासी कहां गया? अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू ही रह गया। आखो भाई, अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू रह गया। जब मैं था आप नहीं थे, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। अब तो ऐसा हो गया जब मैं ही मर गई,
जद हमारी मैं मर गई, केवल तू ही रह गया, फिर तू तो मरता नहीं, मरने वाली तो मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली तो मर गई, अब कौन मरेगा? कोई भी नहीं मरेगा। अब कौन मरेगा? मरने वाली मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली मैं मर गई, जिसकी मैं नहीं मरी वो जीते ही मर गया, जिसकी गुरु शब्द की कमाई से मैं मर गई वो कभी नहीं मरेगा, गुरुमुख ने मैं मार ली। अब तो कहते हैं गुरुमुख नहीं मरेगा। आखो वाहिगुरु, नानक मुए ना आखिए जे गुर कह शब्द समाए। एक पितर शब्द में बोले, परिसरी जे उबरी हो मैं गई मरा हो। कहंदी बड़े चंगा होया, पली होगी, चंगा हो गया। साहिब कहंदे पली सरी बड़ी अच्छी होगी, मैं बच गया। आखो वाहिगुरु, पली सरी जे उबरी, उबरी बच गया। कहंदे होमे जेड़ी सी ना मेरी, मैं मर गई। आखो वाहिगुरु, होमे गई, होमे मुई कराओ, मेरे घर विच ही मर गई। आखो वाहिगुरु, मेरे सामने ही मर गई। जे नस जाती तो शायद फिर वापस आ जानी, मारी गई। आखो वाहिगुरु, होमे मुई कराओ, मेरे घर चो ही मर गई। आखो वाहिगुरु, जब मेरे घरों मर गई तो मैं बच गया। आखो वाहिगुरु, कहते फिर होया कि जो ये मर गई, कह दूत लगे फिर चाकरी। आ जेड़े सी ना पांच, पहला मैं सताते सी, आखो वाहिगुरु हूं मेरी सेवा करन लग गई। आखो कहिंदा जिनी देर तक होमे सी मैंने सताते सी, पांच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। देखो मेरा चित करता सी अमृत वेले उठा, ये लोभ मेरे तो पहले उठ पैंदा सी, एक सवान दो सवानी नाल ये दोनों लोभ रूपी कुत्ता मेरे पहले उठ पैंदा सी। मैं अजे सिमरन नहीं सी करता, बाणी नहीं सी पढ़ता, पहला भौंकण लग पैंदा सी। आखो आई हाथ में मैं पोथियां फड़दा सी ते मन विकार करदा सी। आखो वाहिगुरु, पेख मेरा साधु दा सी, गल्लां बड़ियां चंगियां सी, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां। आखो वाहिगुरु, गल्लां करके तमें सारे चंगा चंगा आचार दा। आखो वाहिगुरु, क्योंकि होमें मरी नहीं सी, जदों मेरी कोई गल नहीं सी मंदा तो अंदर ईरखा, अंदर दुबदा उठ खड़ी होंदी सी। आखो वाहिगुरु, मेरा कदम कदम ए मेरी होमे मरना करके ऐसे पासे लै तुरदी सी जिस पासे इंसानियत मरदी सी ते शैतान प्रगट हुंदा सी। मैं की करा, पर कहंदे ऐसी गल हो गई, हमें मर गई, घरों ही मर गई। आखो वाहिगुरु, हुण तो हमें दी लाश पई है, हमें दी लाश पई पई है, मैनू कदा डर है। आखो वाहिगुरु, मर गई, हमें गई मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी। आ देखो हुण जेड़े दूत सी हुण तो सेवा विच लग गए, हुण तो एक क्रोध दया का रूप धारण कर गया, लोभ संतोख का रूप धारण। हंकार मोक्ष का रूप धारण कर गया, काम सत का रूप धारण कर गया। आखो भाई, हुण तां ये पांच मनाए, पांच पांच रुस गए, पांच वाह वसे, हुण तां ये चाकरी लागे। कहंदे होया किवें? दूत लगे फिर चाकरी, सतगुरु का विसाओ, जदों मैनूं सतगुरु मिल गए ते सतगुरु का भरोसा हो गया। सतगुरु का भरोसा, सतगुरु के शब्द का भरोसा, सतगुरु की बाणी का भरोसा, सतगुरु की सिख्या का भरोसा,

बरसी कैसे मनाएं? आपको वाहिगुरु गुरमुख की याद मना सकते हैं। मत मोलना के गुरमुख मर गया। आखो वाहिगुरु गुरमुख नहीं मरता। जो गुरु के शब्द के कर में समा जाए, नानक मुए ना आखिए, जे गुर कै शब्द समाए, जे गुर कै शब्द समाए, जे गुर कै शब्द समाए। जो गुरु दे शब्द नु कमा लेंदे हन, ओ फिर मरदे नहीं। आखो भाई अज दे पितर शब्द विच भाई साहब बोले, गुर सिख साखी शब्द सिख सुनाया, गुरमुख शब्द विचार सच कमाए। आखो भाई एक गल कह के मैं समाप्ति करांगा, 10 मिनट दा मेरे को समय। आखो भाई गुरमुख साखी शब्द सिख सुनाया, गुरमुख शब्द विचार सच कमाया, सच हृदय मुंह सच सच सुहाया। आखो भाई आखो भाई साखी शब्द गुरमुख गुरु दी सिख्या गुरु दियां साखियां सुनाउंदा। आखो भाई गुरमुख शब्द विचार नू सुनदा सुनाउंदा ते कमाउंदा। गुरमुख ने यह जान लिया कि जीवन जूंदिया ही किवें मुक्त होना। आखो वाहिगुरु बेनती करा, संसार दे लोकी मुक्ति उस नू मनदे हन जो मरण तो बाद मिले। पर सतगुरु ने ऐसा गुरमुख नू समझाता कि जूंदिया ही जीवन मुक्त होना ही मुक्ति है। आखो वाहिगुरु आखो वाहिगुरु उस बारे किवें कहंदे हन, तां श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का पितर शब्द जो जीवन मुक्त दे स्वरूप नू प्रगट करता है, गुरमुख ओ शब्द दृढ़ करता है। गुरमुख ने यह जान लिया गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आ गया मन में सह, गुर के हा सोकार कमा। एक गुरमुख का सिद्धांत है, गुर के हा साकार कमा, गुर के हा साकार कमा। ते पितर शब्द क्या है, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आ गया मन में सह, आपस को कर कछ ना जना, हर हर नाम हृदय सत, मन बेच है सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रा, सेवा करत हुए न कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। ते ए गल कही प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे, तैसा हर तैसा सोग, सदा आनंद तैनही वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। किवें श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी फरमा रहे हैं, आप पढ़िए।

ऐसा गुरुमुख का जीवन जो जीवन मुक्त हो जाता है, प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधि लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधि बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधि बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधि बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधि जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दिया भुलां हो सकदियां हन, बख्श लेनी है बख्श लेनी। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है, फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है। ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे। आखो वाहिगुरु, आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आपे संगत सद बहाल है। आखो वाहिगुरु, मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था। आखो वाहिगुरु, बैठाने वाले ने बिठा लिया, अब समाप्ति हो रही है, आपे विदा करावे, बधाईगी भी आप देगा। आखो वाहिगुरु, लेकिन इसकी विदायगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है। जब बुलाता है तो अपने आप को बिस्माती रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर बिस्माती रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस बिस्माती रंग को संभाल लेना। आंखों वाहेगुरु, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते। वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया, ना खोया, फिर जब मिलेंगे, आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे,
کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے شروتے بن جائیں گے کہ شروتے میں بہت شکتی ہے۔ جے شروتا اچھا مل جائے، وشمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا۔ یہ سچائی ہے۔ جے شروتا وشمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرگٹ ہو جائے گا۔ شروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے۔ میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی شروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے شروتے ہیں، اب تو صرف اندر سے جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں، بلکہ ایک میک ہو جائیں گے۔ آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے۔ آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ۔ رام کلی محلہ تیجا انند، ایک اوہنکار ستگر پرساد۔

कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान। कट कट के अंतर की जान तू भले।

स्वामी सब विद जाने प्रभ मेरा अंतर जामी जान हर अंतर जामी सब विद जाने

सरदा मन की पुए प्रभ मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जान दे। जीव दे मन अंदर की मनुख की चांद है, मनुख जी इच्छा की ये परमात्मा जान दे। जिदे अगे आके असी शीश नवाने आना वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की चाहता की। प्रभु मेरा अंतर जामी जान, मेरा प्रभु जानता है अंदर की बुझ लेंदा है, देख लेंदा है कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया, अज की मांग है, अज इसनू की चाहिए, जो भी चाहिए सतगुरु देंदा है। क्यों?

सोई कसम हमारा ता मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा, सब कुछ करन कराने वाला उपापी, अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा। जिदा एहो जिहा खसम होवे, जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे, ती ओदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जांदी नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनूं ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

मानुक अब माने प्राण मेरा अंत जामी जान। ओ प्रभु सब कुछ जान साहब आखदे ने जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई पावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर, ओ गुरु पावनी पूरी कर देवे, खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा। क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए, जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक्को जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया है, ऐसा दरबार कोई? सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे, चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दी दरबार च आए? जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकता। आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नाल मंग कर लई ते प्रभु कड़ा है, प्रभु मेरा अंत जामी जान, तू करता सब किछ जानदा। गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए, दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है। आके कही तू करता सब किस जानता, तू तो जानना परमात्मा मेनू की चाहिए, मेनू की लोड़ी दे, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसन की कोई जरूरत नहीं।

0: कि साडे मन अंदर ऐसा प्यार है कि गुरु असी तेरे दर्शना तो बिना रह नहीं सकते, जिन्ना चिर तेरे दर्शन ना करिए जीवित नहीं होंगे, मर जाने बहुत घट।
1: हर बिन रह न सको इक राती,

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाए, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेनू शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाउना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहिंदे हन ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, पूंडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

ऐसों के संदूष के पाठ्याय जी समाधि आवाज लाद जी की कर रहे हो तो हजूर कह

अमृत जल छाया पूर्ण सावज राम सर्व मनोरथ पूरे जय जय काल भैरव जगंत लाभे सकल पूरे पूर्ण बुद्धि रज देव दासी

तेरे चेने गुण ने तू इनी बाणी पढ़ता है, शस्त्र विद्या भी सिखदा पे है, गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पे है। एक गल दस, संगत दे झूठे टोले क्यों मांज रहे हैं? क्यों मांज रहे ध्यान देना, ये बड़ी गुण जड़ा ना, ये माधो साधु।

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा ले ली है। ये सच्चे पातशाह शुक्र है इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा ले ली है। सेवक बने प्यारे ओ कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों ही सीखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी इशनान करते पे एक सज्जन खड़ा सी कोल उदे मन च फुरना बनया मूह नहीं बोलिया कहिंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी फुरना ही बने फुरना बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है पाप कर करके काला हो गया। देखो सवा बारह का इशनान एक सवास बिरथा नहीं जाता पर मन कित्थे रखिया।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ा, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।